0: Let's now take you through the top story coming in at this hour from Karnataka. After weeks of suspense, Karnataka's power transition appears to be entering the endgame. Sources tell NDTV that Siddaramaiah could step down as the chief minister within the next couple of days. In a 35-minute meeting with Rahul Gandhi yesterday, Siddaramaiah was reportedly told that any decisions must factor in the 2028 state polls and the 2029 Lok Sabha elections. Sources say that the new government could take shape within a week if the transition goes as planned. A multiple deputy chief minister formula is likely, with Siddaramaiah loyalists expected to get key portfolios. Well, sources also say that Siddaramaiah has called ministers for a breakfast meeting tomorrow when he could resign as a chief minister. He and D.K. Shivkumar are expected to make a joint appearance in Bengaluru later today.
1: सर सिद्धरमैया साहब को स्टेप डाउन करने के लिए बोल दिया सर इस अगले हफ्ते बताया जा रहा है सिद्धरमैया स्टेप डाउन कर देंगे सर क्या कोई आश्वासन कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से आपको दिया गया है आज
2: सिद्धरमैया जी
3: आर यू गोइंग टू स्टेप डाउन सर आर यू गोइंग टू स्टेप डाउन
2: आर यू गोइंग टू रिजाइन सर
3: सर
2: सर हैव पार्टी लीडरशिप टोल्ड यू टू रिजाइन सर सर हैव पार्टी आस्क्ड
3: यू टू रिजाइन सर आर यू गोइंग टू स्टेप डाउन सर
2: Siddaramaiah ji.
3: Sir, are you resigning, sir?
4: कब तक चलेगा कुर्सी झगड़ा वो बंद करो जनता ने आपको पावर में बिठाया झगड़ा करने के लिए नहीं है जनता का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पावर में बिठाया है आप क्या कर रहा है झगड़ा कर रहा है जनता का कष्ट को सुनने वाला कौन है ही नहीं विधानसभा में कोई है ही क्या कोई मंत्री है ही नहीं सब लोग दिल्ली में है दिल्ली आपको पावर दिया नहीं कर्नाटक की जनता आपको पावर दिया है आपको सत्ता में बिठाया जनता ने आप जनता को छोड़ करके दिल्ली में गया है वही जनता आपको पावर से हटा देंगे कौन आपको सत्ता में बिठाया वो लोग सत्ता के खींचने का ताकत भी जनता के पास है किसके वजह से सत्ता में बिठाया आपने कहा कर्नाटक का सरकार में 40% करप्शन है हम लोग बिना करप्शन काम करेंगे क्या किया पावर में आने के बाद 60% तक पहुंच गया बढ़ाया करप्शन को
0: Well, the Karnataka Game of Thrones isn't over yet. In fact, the political buzz is only growing louder. After nearly 6 months of meetings in Delhi involving Siddaramaiah and Deputy D.K. Shivkumar, Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge, the party publicly insisted that only Rajya Sabha and Legislative Council elections were discussed. But behind the scenes, sources even suggest that there is a power transition that is now likely in Karnataka. Take a look at the special report that breaks down the latest.
5: At this point, we will not be taking any questions.
6: It began with an unusual instruction. Congress leader K.C. Venugopal took center stage at Delhi's Indira Bhavan, flanked by Karnataka Chief Minister Siddaramaiah and Deputy CM D.K. Shivakumar. Beside them stood Karnataka in charge Randeep Surjewala, who made an appeal to the media.
5: I also request you to, for heaven's sake, now stop your speculation.
6: Everyone around burst into laughter, but the tension was unmistakable. K.C. Venugopal then made the Congress position official.
7: Today, entire discussion is only concentrated on coming Rajya Sabha elections and council elections of Karnataka. Whatever speculation you people are doing, that is only speculation.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर मसाला।
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: Oh, some of them were either absconding, and the father, of course, as we know, was in jail for quite some time. And after he's been out on bail since last 1 week, we are seeing that this video has been making rounds. What seems to be a celebratory video where there are other members of the family and there are other family and friends involved in that video as well. It will be important and interesting
1: Well,
0: for
1: Anuj,
0: us
1: hold
0: to
1: that
0: see.
1: thought. We have Om Awadhya, the father of the victim of that Porsche case that took place exactly 2 years ago on the 19th of May. We have the father speaking with us. Sir, thank you so much, sir. NDTV पे हमारे साथ बात करने के लिए आपका रिएक्शन जब आप देखते हैं कि जो अक्यूज की फैमिली है वो कैसे सेलिब्रेट कर रही है जब वो अपने उनको बेल मिली है वो घर जा सके हैं. ये केस आपको लगता है आपको जस्टिस मिला है यहाँ पर और जैसे फैमिली बाहर आके सेलिब्रेट कर रही है कोई रिमोर्स नहीं है कि दो लोगों की हत्या हो गई थी उस इंसिडेंट में.
2: जी मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते सर.
2: मैडम मैडम ये बोल रहा हूँ कि ये तो बड़े लोगों का खेल है मैडम, ये तो बड़े लोग करते हैं, कोई वो नहीं है। ये इतने बड़े पूंजीपति हैं मैडम कि जो जो दो होनहार बालकों के हत्या करने के बाद ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कर सकते मैडम, उनके बहुत पैसे है, करोड़पति है, अरबपति है। ये तो न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठता है मैम।
1: बिल्कुल जस्टिस नहीं मिला इस केस में, लेकिन जब
2: नहीं
1: ये
2: मैम
1: केस
2: नहीं कुछ
1: जब ये केस हुआ भी
2: जस्टिस
1: था
2: मिला
1: तब भी
2: जी
1: बहुत सारा अप्रोर हुआ था. इस ये जो केस है
2: जी
1: बड़े सारे लोगों ने आके एक्सपोज करा था जो सिस्टम का
2: जी
1: फेलियर है, जो करप्शन है, वो बहुत सारी बातें बाहर आई थी क्योंकि फैमिली ने बड़ा कवर अप करने की कोशिश की थी. अगर आप डिटेल्स देंगे आपको इस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं.
2: मैडम इसमें तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुई मैडम। क्या है कि ये पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से ना उठा होता तो आज हम लोग कुछ ना होता। ये पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूरा उठा है, आप लोग के तरफ से पूरा उठा हुआ है, इसलिए जाके ये लोग सब पकड़ाए हैं। नहीं तो इसमें कभी ऐसे होते नहीं। ये लोग तो 2 दिन पहले ही मैनेज कर लिए थे, पूरा करोड़ों रुपए बांट करके डॉक्टरों को खरीदना, ये मजिस्ट्रेटों को खरीदना, जो जे जे बोर्ड के हैं उन सबको ये सब पूरा खरीद चुके थे मैडम, पूरा मैनेज करके रखे थे। इस पे
1: बिल्कुल,
2: तो मैं मानूंगा
1: चाहे
2: मैडम
1: ब्लड
2: जी
1: सैंपल ही
2: मैडम
1: क्यों ना हो जो मदर के ब्लड सैंपल के साथ
2: जी
1: उन्होंने चेंज कर दिया था, ऐसी ऐसी बातें जो बाहर आई थी उस
2: मैडम
1: वक्त. हाँ जी सर.
2: ये बताइए मैडम, इन्होंने इन्होंने क्या था, जब गवर्नमेंट थी बीजेपी या जिसकी भी गवर्नमेंट थी उसका विधायक जाके इनका पीजा लेके जाता है, और जो विधायक ने अनसुन जो विधायक अनसुनता किया था किसके, जो आपका टावरे जो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर के लिए उन्होंने अनुशंसा की थी उसको नियुक्त करने के लिए, ससुन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उनको इन्होंने नियुक्त करवाया था, विधायक नियुक्त करवाया था। और विधायक जो है ये सुनील टिंगरे जी जो थे, इन्होंने ही विशाल अग्रवाल के यहाँ काम करते थे, और इन्होंने पूरा मैनेज किया मैडम। उस दिन जब ये रात को 4, 5, 6 बजे सुबह पहुंचे हैं उधर थाने पे, पूरा इन्होंने मैनेज किया है, हर तरह से पूरा मैनेज गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है मैडम, विधायक की तरफ से हुआ है। हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे मैडम, हम लोग तो सिर्फ जो मीडियम के माध्यम से आता है वही हम लोग देख के बता सकते हैं मैडम, बस उसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। हमें तो लगता है सर पूरा सिस्टम उधर बिका हुआ है,
1: बिल्कुल
2: पूरा का
1: जो
2: पूरा सिस्टम मैडम। देखिए मैडम, बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में थी, बीजेपी गवर्नमेंट एमपी में थी, और केंद्र गवर्नमेंट में बीजेपी थी, हर जगह बीजेपी होते हुए हमें न्याय नहीं मिला मैडम। हमारे दो होनहार बच्चे गए हैं, उनकी इस तरह से हत्या की गई है, और उसमें हम लोग तो ये सोच रहे थे इसमें एक कानून बनाया जाएगा कि जो निर्भया में कानून बना था, निर्भया में बना था मैडम 16 से 18 के बीच में, जो इस तरह
1: बिल्कुल
2: ट्रस्ट
1: आप
2: करेगा उसके
1: एक
2: बाद
1: एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पे ये केस को ताकि
2: लिया जा सकता
1: बाकी
2: था,
1: लोगों
2: लिया
1: के
2: जा
1: साथ
2: सकता मैडम
1: ऐसा ना हो सके.
2: जी
1: थैंक यू
2: जी
1: सो मच
2: हम ये
1: सर
2: मैम
1: हमारे
2: मैडम
1: हमसे
2: मैं
1: बात
2: आपके
1: करने के
2: माध्यम
1: लिए.
2: से
1: हाँ
2: जी
1: जी
2: मैडम
1: सर
2: आपसे बात
1: बोलिए.
2: करके यही मैं यही चाहता हूँ, कम से कम एक नियम कानून ऐसा बना दिया जाए कि इन बच्चों को देख करके जो और लोग हैं अभिभावक लोग अपने बच्चों को गाड़ियां ना दें, नाबालिग बच्चों को गाड़ियां ना दें, शराब पीने के लिए मना करें, मतलब कुछ मैसेज जाए मैडम, ये अपन ये चाहते हैं।
1: Absolutely, the buck stops with the parents. The responsibility of raising children, and of course, the outcome of the misdeeds. And this is driving under the influence of alcohol, giving their cars these fancy cars, high speed driving cars, and of course, driving at that speed, which caused the death of two IT professionals. And this also resulted in a major uproar when it came to that outrage that we saw back in 2024. With that, we're slipping to a short break. Back with a whole lot more. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कर सकते हैं मैडम, उनके पास बहुत पैसे हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ये तो न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठता है मैम।
1: बिल्कुल जस्टिस नहीं मिला इस केस में, लेकिन जब
0: नहीं मैम नहीं कुछ
1: जब ये केस हुआ भी था तब भी बहुत सारा यू नो अप्रोर हुआ था इस ये जो केस है, बड़े सारे लोगों ने आके एक्सपोज करा था जो सिस्टम का फेलियर है, जो करप्शन है, वो बहुत सारी बातें बाहर आई थी क्योंकि फैमिली ने बड़ा कवर अप करने की कोशिश की थी। अगर आप डिटेल्स देंगे आपको इस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं
0: मैडम, इसमें तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुई मैडम। क्या है कि ये पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से ना उठा होता तो आज हम लोग कुछ ना होता, ये पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूरा उठा है, आप लोग के तरफ से पूरा उठा हुआ है, इसलिए जाके ये लोग सब पकड़ाए हैं। नहीं थी इसमें कभी ऐसे होते नहीं, ये लोग तो दो दिन पहले ही मैनेज कर लिए थे पूरा, करोड़ों रुपए बांट करके डॉक्टरों को खरीदना और ये मजिस्ट्रेटों को खरीदना जो जे जे बोर्ड के हैं उन सबको ये सब पूरा खरीद चुके थे मैडम, पूरा मैनेज करके रखे थे।
1: ब्लड सैंपल ही क्यों ना हो जो मदर के ब्लड सैंपल के साथ उन्होंने चेंज कर दिया था, ऐसी ऐसी बातें जो यू नो बाहर आई थी उस वक्त।
0: ये बताइए मैडम, इन्होंने क्या था, जब गवर्नमेंट थी बीजेपी या जिसकी भी गवर्नमेंट थी उसका विधायक जाके इनका पीजा लेके जाता है, और जो विधायक ने अनसुनता किया था किसके, जो आपका टावरे जो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर के लिए उन्होंने अनुशंसा की थी उसको नियुक्त करने के लिए, ससुन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उनको इन्होंने नियुक्त करवाया था, विधायक नियुक्त करवाया था, और विधायक जो है ये सुनील टिंगरे जी जो थे इन्होंने ही विशाल अग्रवाल के यहाँ काम करते थे, और इन्होंने पूरा मैनेज किया मैडम। उस दिन जब ये रात को 4-5-6 बजे सुबह पहुंचे हैं उधर थाने पे, पूरा इन्होंने मैनेज किया है, हर तरह से पूरा मैनेज गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है मैडम, विधायक की तरफ से हुआ है। हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे मैडम, हम लोग तो सिर्फ जब मीडियम के माध्यम से आता है वही हम लोग देख के बता सकते हैं मैडम, बस उसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। हमें तो लगता है सर पूरा सिस्टम उधर बिका हुआ है,
1: बिल्कुल
0: पूरा का पूरा सिस्टम मैडम। देखिए मैडम, बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में थी, बीजेपी गवर्नमेंट

0: झगड़ा कर रहा है। जनता का कष्ट को सुनने वाला कौन है ही नहीं विधानसभा में, कोई कोई है ही क्या, कोई मंत्री है ही नहीं, सब लोग दिल्ली में है। दिल्ली आपको पावर दिया नहीं, कर्नाटक की जनता आपको पावर दिया है, आपको सत्ता में बिठाया जनता ने, आप जनता को छोड़ करके दिल्ली में गया है, वही जनता आपको पावर से हटा देंगे। कौन आपको सत्ता में बिठाया, वो लोग सत्ता के खींचने का ताकत भी जनता के पास है, किसके वजह से सत्ता में बिठाया? आपने कहा कर्नाटक का सरकार में 40% करप्शन है, हम लोग बिना करप्शन काम करेंगे, क्या किया पावर में आने के बाद 60% तक पहुंच गया, बढ़ाया करप्शन को।
1: अधिकार हंचिक किताड़ी इडी सरकार रीति कोम स्टेज को आड़ पूर्ति कुस्त बिंदे परमेश्वर ईर जग आगोद्री आड़ कुसित अंत मत कुसद बिंदे वो वर्ष आगोयत आड़ यार मुख्यमंत्री यारगू गारे यार हर यक्ष प्रश्ने दिन पत्रिकली क्वेश्चन मार्के ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾರ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ 365 ದಿನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಜನ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅದು ವೀಕ್ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟ
2: ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಆಗ್ತದೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ.
3: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೇ ಹುಯಿ ಹೈ ಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ಯಹಾ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಏಕ್ ಅನಾರ್ ಸೋ ಬಿಮಾರ್ ಹೈ. अब जो है वो उस एक अनार सौ बीमार को जो है हर बीमार को जो है वो संतुष्ट करने के लिए रोटेशन का चीफ मिनिस्टर बनाने में लगे हुए हैं. जनता ने जो है वो जनादेश रोटेशन के चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं दी थी, बल्कि एक परफेक्ट और एक मजबूत सरकार चलाने के लिए, गुड गवर्नेंस वाली सरकार चलाने के लिए दी थी. लेकिन मुझे लगता है कि उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि जो आने वाला अगला चुनाव है कर्नाटक का, उसमें जो है वो इनको जनता जनादेश देने वाली है नहीं. इसीलिए अभी से जो है वो रोटेशन का में जो है वो दो दो महीने चार चार महीने जो है वो सबको संतुष्ट करने में लगे हुए
4: हैं. वेल, कर्नाटका हैज दिस यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग अ स्टेट दैट इज आल्सो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय सियर्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस दैट आर हेडेड बाय सेंट्स एंड सियर्स हु बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज. This is a state that has the rich religious social tradition of Basavanna, who was seen as a social reformer. So social reform is also intertwined with religious reform in this state, which is why what seers speak in Karnataka also has a lot of political importance. I'm saying all this because a group of seers was present at Delhi's Karnataka Bhavan today, and these are saints and seers, religious heads of Vokaliga Mats, and they came specifically to Delhi to congratulate the high command on this decision of the transition that's expected to be put in place from tomorrow. And they are all supporters of DK Shivakumar, who also comes from the same community. My colleague Jainendra spoke to a few of them at Karnataka Bhavan, Karnataka House in New Delhi, and this is what they said.
5: Not only one face in OBC leader, Siddaramaiah is also leader. Why not become the OBC leader of DK Shivakumar in Karnataka? Because he is also dedicated the party. Last eight times he is in MLA. Eight times, not only he is very...
6: You are saying DK Shivakumar is also OBC leader?
5: No. See, OBC ka janma...
7: पैमानों पर नाम जोड़े गए और हटाए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन हुआ, शिफ्टिंग हुई, डुप्लीकेशन हुआ, लोगों का आना हुआ, परंतु उसके बाद भी यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक थी. अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है, और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है. तो हम ये कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया है। ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड आई वुड लाइक टू आस्क, ये लोग क्या आपको कोई मेहनत करते हुए दिखाई पड़ते हैं? गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा कि मैं 25 दिन लगातार बंगाल में रहूंगा। राहुल गांधी जी कहां थे बंगाल में? चलिए आप कह सकते हैं कि बंगाल में हम बहुत मेन क्लेमेंट नहीं थे, तो असम में तो आप मुख्य विपक्षी दल थे, कितने दिन रहे विपक्ष में वहां असम में जाकर? उसकी बजाय कहीं कार निकोबार में घूम रहे थे, कहीं वियतनाम में घूम रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं यह बात नैतिक और राजनीतिक आधार पर, हमारे सभी प्रमुख नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, इसके अतिरिक्त अमित शाह जी, इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, तमाम लोगों की आपने वो बैठकें देखी होंगी, वो सम्मेलन देखे होंगे जो शक्ति केंद्र और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम आपने देखे, मंडल अध्यक्ष स्तर लोगों के कार्यक्रम देखे। कांग्रेस में कितनी बार आपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन देखे, कितनी बार मंडल अध्यक्ष के सम्मेलन देखे? अर्थात काम कुछ नहीं करना, चुनाव के समय भी मन लगाकर कोई काम नहीं करना, फिर बाहर से जाकर कुछ बातें अनाप शनाप बोल देना और फिर यह सोचना कि उनको चुनाव जीत लिया जाएगा। मुझे लगता है देश की जनता यह समझ रही है, और इसका एक और खतरनाक अर्थ भी है। यह विषय सिर्फ यह नहीं है कि SIR पे आरोप निराधार सिद्ध हुआ, विषय उससे ज्यादा गंभीर है। आज विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उसका करार चीन में है, परिवार इटली में है, विचार का केंद्र इंग्लैंड में है, यूरोप में, और दुष्प्रचार का केंद्र अमेरिकी संस्थानों में है, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मैं पुनः यह कह रहा हूं, करार के तार चीन से जुड़े हैं, विचारों के तार यूरोप से जुड़े हैं, दुष्प्रचार के तार अमेरिका से जुड़े हैं, परिवार के तार इटली से जुड़े हैं, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मुझे लगता है अब उनका यह असली चरित्र का चोला उतर गया है और वह पूरा चरित्र जनता के सामने तार तार हो गया है। तो मैं सिर्फ अंत में, कांग्रेस का जो दुष्प्रचार है, विशेषकर राहुल गांधी ने, आपको याद करिए, यह बिहार के चुनाव को लेकर था, बिहार के चुनाव में कितनी रैलियां की, कितनी बार उन्होंने विपक्षी दलों के लोगों को बुलाया। आपने स्टालिन को बिहार में बुलाया, जिनके लोगों ने बिहार के लोगों के बारे में क्या क्या नहीं बोला था। आपने उन रेवंत रेड्डी को बुलाया जिन्होंने बिहार के DNA के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, और उसके बाद हार का ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पे। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को और विशेषकर राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगा, इस निर्णय के बाद उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और अपशब्दों की भाषा छोड़नी चाहिए। अपनी विदेश यात्राओं के भुगतान संतुलन में फंसकर जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उस संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा इस निर्णय के बाद कि वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। धन्यवाद।
8: कुछ सवाल आपकी तरफ से होंगे?
7: मैंने तो यह प्रश्न सामने रखा है, आपने कितनी बार उनको जिला अध्यक्षों के, मंडल अध्यक्षों के, बूथ केंद्रों के कार्यकर्ताओं के बीच में काम करते हुए देखा है? और तो और, अपने ही वर्कर्स पे आरोप लगाते हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी अहमदाबाद गए तो कहते हैं गुजरात में दो प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ और एक कांग्रेस जो बीजेपी के साथ। मतलब अपनी पार्टी के नेताओं को छोड़िए, कार्यकर्ताओं का भी ऐसा अपमान करने के बाद कोई सोचे। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से एक और सवाल करना चाहता हूं, आप सिर्फ विपक्ष में नहीं है, आप कई राज्यों में सरकार में भी हैं और तीन

0: जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को फूड ग्रेन पूल्स में सबसे ऊपर तक पहुंचाया था। मध्य प्रदेश में ये लाडली लक्ष्मी योजना उसी जमाने में आई थी, शिवराज जी को मामू कहना उस जमाने में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश हमारी सरकार, इवन जब कल्याण सिंह जी की सरकार आई थी और राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत होता था, वो एक मॉडल था। तो मैं कह रहा हूं आपका मॉडल क्या है? विपक्ष में कोई मॉडल नहीं, मॉडल यह है कि हर राज्य में दो धड़े हैं कांग्रेस में, और दुम धड़म धड़ैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया रहे, कि पहले मुझे मिल जाए कि मुझे मिल जाए। आज जो लोग सवाल पूछते थे, मुझे लगता है उन्हें आंखें खोल के देखना चाहिए कि बंगाल में हाकिमपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार से लाइन लगी हुई है वापस जाने के लिए, और अनेक लोग उसमें स्वीकार भी कर रहे हैं कि वोट वोट डाल भी चुके हैं पिछले चुनावों में। इससे पहले भी जब ये विषय आया था तो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ऑन कैमरा मतलब इस बात को स्वीकार किया कि चार चार बार वोट डाल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा वोट के लालच में और घुसपैठियों के लालच में कांग्रेस को नहीं पड़ना चाहिए था। एक पुरानी उर्दू की कहावत होती है, कम खाए गम खाए, ना हकीम का जाए ना हाकिम का जाए। हाकिम का मतलब आप समझते हैं, ऑफिसर पुलिस वाला, और हकीम मतलब डॉक्टर। तो कम खाओगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, गम खाओगे तो लड़ाई नहीं होगी तो पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हाकिमपुरा से उन्हें यह संदेश लेना चाहिए था कि अगर उन्होंने वोट का लालच थोड़ा कम खाया होता तो यह हाकिमपुरा का जो मुकाम है वो नहीं दिखाई पड़ रहा होता। और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि गृहमंत्री अमित शाह जी ने जो बात कही वो अक्षरशः सत्य थी। फिर भी किसी को शक और शुबे हो तो बांग्लादेश का एक सांसद तक बोल चुका था कि यदि बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाएगी तो बहुत से लोग वापस आने लगेंगे। अब वापस आने के बाद भी किसी को ना समझ में आए तो मैं यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में द डेली स्टार, जो कि बांग्लादेश का अखबार है, उसमें कांग्रेस के नेता अखबार में आर्टिकल लिख रहे थे कि मोदी हैज टू गो। तो मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहा था, बांग्लादेश के अखबार में क्यों आर्टिकल लिखा जा रहा था कि मोदी हैज टू गो? ये बांग्लादेश में संदेश क्यों दिया जा रहा था? और वो संदेश का प्रभाव देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा है कि असम का धुबरी क्षेत्र मिनी बांग्लादेश है, और उस तथा कथित मिनी बांग्लादेश, जो मैं नहीं कह रहा हूं, असम के मुख्यमंत्री,
1: बीजेपी देयर रिएक्टिंग टू द बिग न्यूज टुडे, द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग द इलेक्शन कमीशन्स पावर टू कंडक्ट द SIR। रिमेंबर दिस हैड बीन चैलेंज्ड बाय सेवरल पार्टीज एंड एज वेल एज NGOs एंड हैड चैलेंज्ड द SIR दैट हैड टेकन प्लेस, द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। रिमेंबर इट वाज फर्स्ट अंडरटेकन बिफोर द बिहार इलेक्शंस एंड देन ऑफ कोर्स इन वेस्ट बंगाल। द सुप्रीम कोर्ट टुडे रूलिंग that the SIR exercise is constitutionally compliant. Well, let's go across to Prashant for more on this. And Prashant, the BJP there hitting out at the Congress and specifically at Rahul Gandhi for ever questioning the SIR process. It's been very, very contentious. But today, the Supreme Court ruling coming in.
2: Yes, Supreme Court's judgment seems to have validated what BJP has been saying all along, all the BJP leaders, including Home Minister Amit Shah. And that is why you have seen Sudhanshu Trivedi hitting out at Rahul Gandhi, because it was Rahul Gandhi who first raised the question and then all the opposition parties followed. Not only BJP, all the alliance partners of the BJP have also hit out at the opposition parties. JDU has said that now, since the Bihar was the first state where SIR exercise was undertaken, JDU has also targeted Rahul Gandhi and the entire opposition, saying that now that Supreme Court has validated what happened in Bihar, they should stop raising questions on the elections that took place in Bihar and the result in which NDA emerged victorious. So now the entire BJP and its allies have hit out at the opposition. Opposition on its part, I've heard Congress leader Pramod Tiwari saying that they were never against SIR, but they are still against the way it was conducted, and the entire process is under question. So that is their defense. But yes, right. The politics has been played out.

0: ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि देहात का मजदूर गरीब जाता है कमाने, लौट के साल भर में आता है, आपने 2 महीने का टाइम दे दिया कि आगे बताओ तुम जिंदा हो। सवाल ये, लाखों लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6000 लोग तो उनमें बैलेट मान लिए गए, और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो बैलेट हो जाएंगे तो उनका क्या होगा?
1: देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के हिसाब से ही चलता है ना, आर्टिकल 324 से लेकर 326 के बीच में इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकार लिखे हुए संविधान में। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कुछ हैं संविधान ज्ञाता, संविधान विद्य, जो अपनी बुद्धि को संविधान से ज़्यादा मानते हैं। ऐसे ही लोग SIR के खिलाफ थे, राहुल गांधी जी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, TMC, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये लोग हैं अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं। समस्या ये नहीं है कि विरोध करना है, समस्या ये है कि अपने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन को कितनी गालियां दी गई हैं पिछले 6 महीने में।
2: SIR की प्रक्रिया जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लगातार जो है वो आजाद भारत के आजादी के बाद से लगातार चलती रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से SIR को लेकर के इस पर जो है वो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, काल्पनिक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, वो जो है वो देश हित में नहीं है। SIR में जो है वो जो वैध मतदाता है या जो वैध नागरिक हैं उनकी सुरक्षा है, और जो अवैध मतदाता या अवैध नागरिक हैं उनकी समीक्षा है। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसको लेकर के जो कुछ लोगों का ये एक हिस्ट्री शीटर बन गए हैं कि कैसे जो है वो देश में जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करो।
3: Under Article 324, the Election Commission is mandated under the constitutional scheme to take care of elections in India, and having free and fair elections is a requirement of a democracy. In that context, at regular intervals, the Honorable Election Commission has these special intensive drives in terms of correcting the voter list, and every political party has a stake to ensure that elections are free and fair and the voter list is absolutely pure. Only bona fide voters are there. This is what the scheme of things is, and that's what the Honorable Supreme Court has held. So I think it should close the doors on those who are raising unnecessary questions against the Honorable Election Commission.
4: Judgment hua hai SIR ke liye, ye Bihar ka matter ke liye. Bihar ka jo SIR ko challenge kiya tha, उनमें एक जजमेंट हुआ है, उनमें बोला है बिहार में जो प्रोसीड्योर को ठीक से किया है, और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात बोला है, जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, और नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है।
5: चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं।
6: Those are the political reactions coming in. But earlier, last year, in 2025, the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, spoke about the SIR exercise. Let's listen in to what he had to say.
7: राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।
6: Switching tracks now, the Agarwal family accused in the controversial Pune Porsche car accident has once again faced scrutiny. This is after a video of them celebrating has gone completely viral. The video shows the father of the minor accused in the case celebrating at a lavish party with his wife, his son, while wearing a garland of currency notes. This comes about close on the heels after he was granted bail.

0: माध्यम से ही पता चला है कि दोषियों की जमानत के बाद इन्होंने पार्टियां मना रहे हैं। सोशल मीडिया में देखने में आया है कि इनकी मतलब नोटों के माला पहन करके ये लोग पार्टियां मना रहे थे। हम ये चाहेंगे कि न्यायपालिका जो है इनकी सुप्रीम कोर्ट जो इन्होंने जमानत दिया है वो उनकी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के इनकी जमानत रद्द करे ताकि समाज के बीच में मैसेज सही जाए। ये लोगों के लिए ऐसे ही करना चाहिए।
1: अभी आप क्या चाहते हैं?
0: अब हम यही चाहते हैं कि कम से कम न्यायपालिका जो है इसमें संज्ञान लेकर के इनकी जमानत रद्द करे और कम से कम ऐसा नियम कानून बनाए ताकि ये दोनों जो होनहार बच्चे गए हैं तो दूसरा कोई मतलब ऐसा केस दोबारा ना हो पाए और कोई बड़ा आदमी ऐसा ना कृत ना कर सके।
2: गुस्सा आ रही है ये देख के कि आज जो जो मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को जिसने मारा, उसके आज पिता, उसके पिता ने इतना घिनौना काम किया है उसके बेटे ने, और आज उसको जमानत, जमानत के बाद वो इतना खुश पार्टी मना रहा है, दो लोगों की जान लेके पार्टी मना रहा है, वो भी नोटों की माला पहन के। लोगों के बीच में ये गलत मैसेज जा रहा है इस बीच से कि पैसे के आगे वो कुछ, सबको और लोगों को क्या ही लगेगा इसमें, कि आम पब्लिक के लिए कानून कुछ भी नहीं है क्या? कानून मतलब केवल पैसे वालों के लिए है कि पैसे फेंको और कानून को खरीदो और कुछ भी नहीं है। आम पब्लिक ये सोचती कानून हमारे साथ है, हमको न्याय मिलेगी। आज 2 साल हो गए मेरे बेटे को गायब हुए, आज भी हमें न्याय नहीं मिला।
3: And that was slipping into a very short break. We just heard family members how they're reacting to the party of those who were responsible for what happened back in 2024, where two IT professionals lost their lives. We're coming back with a whole lot more on the other side. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा, सबका
4: राजा आतुर मसाला।
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: World's border belt, citizenship is no longer just a political slogan. It is the need to secure our borders. Bureau Report, NDTV.
1: All right, big news from the Supreme Court today, and a big boost for the Election Commission as well as a setback to the opposition. Today the Supreme Court had ruled that the Election Commission's power to conduct a special intensive revision of electoral rolls, stating that the process is vital for free and fair elections. There were, remember, a batch of petitions which had challenged the legality of the SIR that was first undertaken by the Election Commission in Bihar in June last year. Now, the top court ruled that the SIR exercise is constitutionally compliant. A bench headed by the Chief Justice Suryakant confirmed that the poll panel acted within its statutory powers. The court also emphasized that free and fair polls depend on the integrity and accuracy of electoral rolls. The Congress questioned the judgment, saying that the current procedure to conduct SIR was different to what was used in the past by the Election Commission, and that they had questioned the manner in which the special intensive revision of electoral rolls was carried out. Meanwhile, the BJP slammed the opposition and especially the Congress and Rahul Gandhi for questioning the validity of the SIR and also hailed the top court's decision.
2: जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है, और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा PIL फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे, जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि SIR ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है, उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIR बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूप के अनुरूप है, और SIR बिल्कुल आवश्यक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए।
3: मुद्दा ये नहीं कि SIR इलेक्शन कमीशन करा सकता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो हम करवाई चुके हैं SIR, लेकिन SIR होता था 4 साल, ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ 4 महीने 5 महीने 6 महीने में चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि देहात का मजदूर गरीब जाता है कमाने, लौट के साल भर में आता है, आपने 2 महीने का टाइम दे दिया कि आगे बताओ तुम जिंदा हो। सवाल ये, लाखों लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6,000 लोग तो उनमें बैलेट मान लिए गए, और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो बैलेट हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा?
4: देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के हिसाब से ही चलता है ना, आर्टिकल 324 से लेकर 326 के बीच में इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकार लिखे हुए हैं संविधान में, लेकिन हमारे यहाँ कुछ कुछ हैं संविधान ज्ञाता, संविधान विद, जो अपनी बुद्धि को संविधान से ज़्यादा मानते हैं, ऐसे ही लोग SIR के खिलाफ थे, राहुल गांधी जी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, TMC, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये लोग हैं अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं। समस्या ये नहीं है कि विरोध करना है, समस्या ये है कि अपने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन को कितनी गालियां दी गई हैं पिछले 6 महीने में।
1: Now, earlier in 2025, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar had spoken on the SIR. Listen in to what he said.
5: राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान, इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।
1: All right, with that, time for us to slip into a short break. More news and updates coming up on the other side. Do stay with us.

0: उनको हैरानी महसूस हो रही है और उन्होंने एक अपडेट लिखा है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। उनका कहना है, विशाल अग्रवाल इज इशूड एन ऑफिशियल प्रेस नोट रिगार्डिंग अ वायरल वीडियो, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, डिनाइज जेल रिलीज सेलिब्रेशन क्लेम्स, अग्रवाल रिफ्यूटेड मीडिया क्लेम्स दैट द वीडियो शोज हिम सेलिब्रेटिंग हिज रिलीज फ्रॉम जेल, कॉलिंग द एलिगेशंस फॉल्स एंड डेफेमेटरी। ये बेसिकली बोल रहे हैं सविता और ओम जी कि ये वीडियो सही है लेकिन ये बेल मिलने का जश्न नहीं है, ये बेल मिलने का सेलिब्रेशन नहीं है, ये बिल्कुल एक पार्टी चल रहा है लेकिन ये बेल मिलने का सेलिब्रेशन नहीं है। क्या आपके मन में कुछ बदलता है ये क्लैरिफिकेशन सुनकर ओम जी?
1: जी नहीं, जी नहीं, जी
2: नहीं सर, कुछ नहीं, ये
1: बिल्कुल नहीं,
2: सेलिब्रेशन उसी का है सर।
1: ये किस चीज के लिए इतना सेलिब्रेशन हो रहा है सर?
2: दुनिया को दिखा रहे हैं सर
1: की मालूम रहेंगे, और इसके बाद इतना जो गाने बज रहे हैं कि मुंबई से आया मेरा दोस्त, ये किस चीज के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है? आज आपने थोड़ा तो गिल्ट कम से कम अपने मन में रखिए, थोड़ा तो कम से कम अपने मन में ये सोचिए कि किसी दो बच्चों की जान लिया है आपने, किसी का लाल, किसी के घर से घर का चिराग आपने बुझवाया है, कम से कम थोड़ा तो ये सोच लीजिए, थोड़ा तो अपने मन में। हमारा दुख तो इतना था, किसी तरह से हम लोग जी रहे हैं सर, बस उसको याद करते हैं किस तरह से हमारे दिन बीतते हैं ये सोच के, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा बच्चों को, न्याय मिलेगा बच्चों को, लेकिन अभी तक हमको कोई है हमारा हमको, और ये वीडियो देख के तो हमको बहुत ज्यादा दुख पहुंच रहा है इस चीज का कि आज हम लोगों के लिए कोई कानून नहीं है कि हमारा थोड़ा भी हमारे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए किया जाए, इसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है आगे।
2: सर इस वीडियो को देख करके यही समझ में आता है कि न्यायपालिका जो है कहीं अब सही रही नहीं है, सब जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बड़े लोग न्याय को चाहे तो खरीद सकते हैं, बड़े पूंजीपति हैं, सब खरीदा जा सकता है न्याय, हर जगह यही देखने में आ रहा है, सोशल मीडिया सब जगह यही समझ में आ रहा है, न्याय बिक रहा है और हकीकत में भी यही है, बड़े बड़े वकील लगा लो तो आपको न्याय मिल जाएगा, यही हाल इधर भी हो रहा है सर। हम लोग को उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से इसीलिए मांग कर रहे हैं कम से कम उसमें झुके।
0: जी सविता रोम जी, मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस केस में क्या हुआ था। ये मई 2026 में का हादसा था पुणे में, जब वेदांत अग्रवाल जो इस वीडियो में है तब वो नाबालिग थे, अब वो अडल्ट हैं, और 2024 में हुआ था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पोश का इंसिडेंट था, उसके बाद जब वो अरेस्ट हुए थे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, उनको बिल्कुल तुरंत बेल मिल गया था और एक कंडीशन था कि वो एक 300 वर्ड का एक ऐसे लिखे रोड सेफ्टी के ऊपर, और इसलिए ये स्टोरी काफ़ी बड़ा हो गया था और मैंने लगातार इसको कवर करके आ रहा हूँ। उसके बाद उनके माँ बाप भी जेल के अंदर चले गए थे क्योंकि ये फैक्ट सामने आया था कि वो जो ब्लड सैंपल था, जो ड्राइवर था वेदांत, उसका ब्लड सैंपल स्विच हुआ था, कुछ रिश्वत दिया गया था सैसून हॉस्पिटल में, तो उसका जो अल्कोहलिक ब्लड था वो स्विच हो गया था ताकि वो रिलीज़ हो जाए या उसके ऊपर कार्रवाई कम हो। यही पेरेंट्स जो हैं सविता जी और ओम जी, उनको बेल मिल गया है, ये प्रूफ सामने आया है, ये बिल्कुल प्रूफ सामने आया है कि आपके बच्चे की मौत के बाद उन्होंने डेलिबरेटली कोशिश की इस इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज करने की।
2: जी। वो इन्होंने तो न्यायपालिका का मजाक बनाया।
0: आपके मन में कोई होप अभी भी है जस्टिस के लिए सविता जी, ये सब वीडियोस देख के? जी ये बिल्कुल सही है कि अब परिवार क्लैरिफाई कर रहा है कि ये बेल को लेकर सेलिब्रेशन नहीं है, बेल को लेकर जश्न नहीं है, और ये मीडिया फैक्ट्स ट्विस्ट कर रहा है, ये डेफामेटरी इन्फॉर्मेशन है। क्या आपके आप अनीश की माँ हैं सविता जी, आपके मन में कुछ बदलता है क्या?
1: जी नहीं सर, ये सब सोशल मीडिया पे ज्यादा वीडियो चलने लगते हैं तो अग्रवाल ने अब ये सीधा सतर ये निकाल लिया कि ये कहने के लिए कि ये सेलिब्रेशन किसी और चीज का है, ये ऐसे कैसे लोग कैसे मानेंगे कि सेलिब्रेशन किसी और चीज का है? अभी तक आप जब कोर्ट जेल में थे तब ये सेलिब्रेशन की वीडियो तो नहीं आए किसी चीज के, आज आप जेल से छूटे और आपके सेलिब्रेशन की वीडियो आने लगे, किस चीज का ऐसा आप कहीं से जंग जीत के आए क्या या

0: कहीं से चुनाव जीत के आए तो आपके गलों में गले में नोटों की माला पहना के और सेलिब्रेशन किया जा रहा है।
1: सर इसमें एक चीज ये बोलना था कि इसमें कम से कम एक समाज में ऐसा मैसेज आए तो सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट को गाइडलाइन करे इस तरह का कि जो 16 से 18 साल का अपन क्राइटेरिया मांग रहे थे बालिग का केस चलाने का, इसमें भी वही नियम बनाया जाए, क्योंकि ये एक मिसाल के रूप में है, ये छोटा मोटा केस नहीं है। इस केस में क्या है, कानून का पूरी तरह मजाक उड़ाया गया है, मतलब इसमें इतना लेन देन हुआ, इतना सब कुछ हुआ, इसलिए कम से कम इसको सामने रख करके कम से कम पब्लिक को ऐसा दिखाया जाए कि अपने बच्चों को जो है सही गाइडलाइन दे, सही बच्चों को सही सलाह दे, ये हम चाहेंगे सर।
2: ओम जी आप कोर्ट्स के सामने गए हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये कोर्ट केस है, ये तो चलता जाएगा, लेकिन ये जो अग्रवाल परिवार है, आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है, जो लोग पुणे में रहते हैं उनको बहुत अच्छा पता है कि ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल लोग हैं, ये एक बिल्डर फैमिली के हैं, वो पुणे में बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। बहुत सवाल उठते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को कैसे इन्फ्लुएंस किया गया है, पुलिस के माध्यम से या नेता लोग जो हैं, एमएलए लोग जो हैं, कोर्ट्स की तरफ से, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ होगा। अब ये लोग सब बाहर हैं, अब ये सब लोग बेल लेकर ये सब बाहर हैं, क्या आपके पास एक भी फ़ोन आया है, एक भी लेटर आया है, एक भी मैसेज आया है इस परिवार से 2 साल में सर?
1: नहीं सर, किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया, जबकि इसमें इन्होंने इतना सब खेल किया, उसके बाद हम लोग से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कभी कोई बात नहीं हुई, किस श्रद्धांजलि या कुछ भी किसी चीज के लिए इनको ये लगे कि हमसे कोई गलतियां हुई है, मतलब आज तक हम लोग से कोई नहीं, हम लोग कहिए बल्कि ये जो वीडियो दिखा के हम लोग को और जो दुख था उसको और उन्हें दिया गया है, मतलब उस दुख को फिर से ताजा कर दिया गया है।
2: आपका अगला कदम क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कोर्ट्स के पास गए हैं, आपका विश्वास काफ़ी कम हो गया है कि जस्टिस मिलेगा अनीश और अश्विनी के लिए, तो आपके पास क्या क्या प्लान है आगे जाकर? सविता जी, मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा, आप माँ हैं, 2 साल चले गए हैं इंसिडेंट के बाद, क्या आपके पास कोई प्लान है, कोई समाधान है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे अब?
1: सर हम लोग यही मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो है बेल रद्द की जाए, इन सबको बेल रद्द करके बच्चों को कम से कम न्याय मिले, इसलिए उसमें त्वरित तौर से मतलब जल्द से जल्द जो निर्णय हो दिया जाए, हम ये चाहेंगे ताकि उन बच्चों को आत्मा की शांति मिले।
0: मेरे बेटे को जब तक
2: सविता जी नहीं, एक सीधा सवाल आपके लिए
0: जी,
2: सविता जी एक सीधा सवाल आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में उस नाबालिग की माँ भी शामिल है, इसके पहले भी एक वीडियो सामने आई थी कुछ साल पहले जब वो हाथ जोड़ के भीख मांग रही थी कि उसके बच्चे को छोड़ दीजिए, आपको पता है वो सब। एक माँ होने के नाते, एक माँ की तरफ से आप क्या बोलेंगे उस नाबालिग की माँ को, क्योंकि वो भी इस वीडियो में शामिल है। सविता जी आप क्या बोलेंगे, मदर टू मदर आप क्या बोलेंगे?
0: उसको अपने बेटे की चिंता थी, उसने हाथ जोड़ के बोला कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, मैं क्या बोलूं, मेरा तो बेटा चला गया ना मुझसे दूर, मेरे बेटे को ला के दे सकते हैं वो, मेरे बेटे को ला के दे दे मुझे, मैं समझ सकती हूँ कि वो उसको अपने बच्चे की चिंता है, लेकिन ये भी तो सोचे कि जो गया है वो भी तो किसी का बच्चा है ना, आपका बच्चा तो आपके पास है, मेरा बेटा तो 2 साल हो गए मैंने देखा नहीं उसको, जब वो पुणे में रहता था तो वो अगर 1 महीने 2 महीने भी नहीं आता था तो मैं उसको कॉल पे कॉल करती थी, बेटू आ जाया, बहुत दिन हो गए आ जा, मिलना है तेरे से, अब ऐसे टाइम निकल गया, 2 साल निकल गए, एक बार भी उसकी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, उसकी आवाज़ सुनने को तरस रही हूँ, तो जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग पड़ी है उसको निकल निकल सुनती हूँ कि कम से कम उसकी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़े, उसको देखने के लिए फोटो में देखती हूँ, आज वो हम झेल रहे हैं, वो टाइम झेल रहे हैं कि अपने बेटे को हम फोटो में देख रहे हैं और दिल को तसल्ली कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारा था जो अब नहीं है हमारे बीच में, केवल वो अग्रवाल फैमिली की वजह से और अग्रवाल के बच्चे की वजह से, आज अगर हमारा बेटा हमारे साथ होता तो हम लोग भी हंसी खुशी रह रहे होते अपने परिवार में, जो हम दिन भर हमारा पूरा दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता सर कि हम रोते ना हो या हमारी आंख से आंसू ना गिरता हो, और ये वीडियो देख के तो हमारा दिल ऐसे लगता है कि आज ही की बात है और ये सारे लोगों को

0: कंफर्म करना चाहता हूं कि एनडीटीवी और मैं आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खड़े हैं, और जस्टिस लाने तक इस स्टोरी को हम जाने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के
1: लिए। मीडिया के भरोसे ही है सर, आप लोग से ही न्याय की उम्मीद,
2: आप लोगों के भरोसे ही है सर। आप हम लोगों का साथ देते रहिए, तभी हम लोगों को जस्टिस मिलेगा। नहीं तो कानून के हिसाब से और दो लोगों के हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चों को जस्टिस मिल पाएगा। बस आप ही लोगों का सहारा है, आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को शायद न्याय मिल जाए।
0: हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे इससे। थैंक यू,
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट द बिग ड्रीम द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी सो वेयर आर यू

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट द बिग ड्रीम द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी सो वेयर आर यू
2: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht. Sealtland, her rose.
1: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together.

0: However, the decisions are not officially communicated as yet from the High Command or from the Honorable Chief Minister. Therefore, it is appropriate that we await for their official response. And the Chief Minister has very categorically said today that he will respond tomorrow.
1: But obviously there is a transition taking place, Mr. Ponnanna, and you know we're hearing that there will be a change of guard by the end of this week. Any light you can throw on that?
0: No, you see, as I said, it's hard for me to say anything. It is the Chief Minister's decision. Siddaramaiah ji is one of the tallest leaders that Karnataka has seen. He has been Chief Minister for 8 years. So it is, most appropriate and necessary, if you ask me, that these decisions, sensitive decisions, come straight from him rather than we go around.
1: Mr. Ponnanna, you're not just another Congress MLA. You know, you are part of the Siddaramaiah inner circle. You've been an advisor to him. You know, he depends on your advice. You've spent a lot of time with him today, crucially as well. What next for the Chief Minister? What next for Siddaramaiah after this transition? You know, he has a towering legacy. He has a huge base that will be very curious about where he lands next. You know, give us something that we can talk about.
0: Yeah, you know, the Congress party, I am sure, will, in the eventuality that you are contemplating right now, it's not what I am saying, in that eventuality, then I am sure the Congress party has thought out some strategy to ensure that his support base continues with the Congress and continues to help us electorally.
2: Now, is the Congress playing a balancing act? Because there are the rumor mills are working extra time now to speculate that if there is a change, then KPCC chief will also be changed, and Satish Jarkiholi, who's the front runner for the post, in a way that the Congress might try to balance it, as Jarkiholi is seen as one of the Siddaramaiah camp member. Listen in to what he said when asked about it.
3: Mr. Satish Jarkiholi joining us today after the socio-economic survey was accepted by the Karnataka Chief Minister. So, बहुत बातचीत हो रही है कि Chief Minister कल resign करेंगे. एक दिन पहले socio-economic survey accept होता है और submit भी होता है. क्या ये पहले ही ready था या आज suddenly ready हुआ है? ये बातचीत चल रही है.
4: नहीं, पहले ready था. उसको लेने के लिए बहुत दिन चर्चा चल रहा था. आज लिया है. कल तो सीएम साहब ने ब्रेकफास्ट के लिए सभी उनका कलीग्स बुलाए. देखेंगे क्या उधर बातचीत होता है, क्या आपको सुझाव देंगे, सलाह देंगे, उसके बाद ही आगे का राजनीतिक शुरू होता है.
3: सर, लेकिन ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो है, चीफ मिनिस्टर बहुत साल पहले भी उन्होंने बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए. लेकिन प्रीवियस सर्वे जो था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था. इस बार सिर्फ एक्सेप्टेंस हो रहा है और चीफ मिनिस्टर शायद रिजाइन करने की भी बातचीत हो रही है. तो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या होगा?
4: नहीं, सरकार करेंगे उसको. सरकार तो इम्प्लीमेंट करेंगे. अभी उसका स्टडी करना जरूरी है.
3: तो कल चीफ मिनिस्टर इसके बारे में बोलेंगे क्या?
4: जरूर बोलेंगे, क्यों नहीं, इसके बारे में जरूर बोलेंगे.
3: तो क्या ब्रेकफास्ट में क्या होगा सर?
4: पता नहीं है, हम भी इंतजार में हैं. कल तक वेट करेंगे.
3: सर, एक बार तो वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट हुआ सिद्धरामैया जी के घर पे, दूसरी बार नॉन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट हुआ. अभी कल जो कैबिनेट कलीग्स के साथ ब्रेकफास्ट होगा, ये किस तरह की ब्रेकफास्ट होगा?
4: ये भी वेजिटेरियन होगा उसमें.
3: लेकिन जो न्यूज निकलेगा, क्या वो सरप्राइज करेगा कर्नाटका को?
4: पता नहीं, पता हम कल तक
3: चीफ मिनिस्टर कुछ एक्सप्रेस किया है
4: उसके
3: मिनिस्टर के साथ थे दिल्ली में, उधर कुछ बोला चीफ मिनिस्टर ने सर उनके डिसीजन?
4: हमको तो नहीं मिला. सीम से रात को डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ गए हैं, हम आज आ गए हैं.
3: और ये ट्रांजिशन जो हो रहा है, इफ इट हैपेंस, कौन लेगा जो चीफ मिनिस्टर की मेंटल है, क्या डिसाइडेड है?
4: वो पता नहीं, कल आपको बताएंगे, 9 बजे के बाद बताएंगे. अगर सीएम जब बोलेंगे तो उसको बताएंगे ना.
2: So all eyes will be at 9 a.m. tomorrow when this breakfast meeting, the much talked about breakfast meeting, will take place. From the menu to the politics, what will happen remains the top focus here on NDTV. While in Karnataka, the Congress power struggle may have stayed behind closed doors, but the political messaging never stopped. For nearly 3 years, D.K. Shivakumar and Siddaramaiah balanced power, ambition and party unity. But while one projected authority, the other played the long game. Here's a look at how D.K. Shivakumar turned patience into political leverage.